0: आवाज विहीनहरुको आवाज जन आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज
1: वेस्ट आर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला दी जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।